0: हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कल नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लंबाई बढ़ाए जाने और भार वहन क्षमता में वृद्धि के बाद उन्नत स्लिपवे 4 और गोलियत क्रेन की मदद से शिपयार्ड 45,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और जलावतारण कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण की शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी। गोवा में पोरवोरेम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
3: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और विपक्ष के नेता यूरी आलेमाओ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विधानसभा भवन को समर्पित विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया जाएगा। स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के चारों दिन आम जनता के लिए कार्यक्रम खुले रहेंगे। समापन समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर मुख्य अतिथि होंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की।
4: विजयम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजयम ने अपने पहले साल में ही 1 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
1: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल विजयम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत के एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
5: इन माई ओपिनियन विजयम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर ट्रिवेंट from Kerala but for the whole of India. If even a fraction of shipments presently handled through the foreign ports like Colombo, Jebel Ali in Dubai or Singapore could be brought back to Vizhinjam, I'm sure that we can create enormous value within India through trade, logistics and employment, even allied industries.
4: Apni badhti kshamta, seedhe exim connectivity aur vishwastariya aadharbhoot ache ke saath Vizhinjam vaishvik samudri vyapar mein Bharat ki sthiti ko mazboot karne ke liye taiyar hai. तिरुअनंतपुरम से स्मिथि एम पुनरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अल
0: एआई ऐप पर उपलब्ध हैं।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने यह बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने किया। बैठक में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने तथा अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सर्गोई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभ

0: सारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। बकौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा, कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध। अपराध रोकना महत्वपूर्ण बात की कार्रवाई नहीं। तनाव के इलाज की राह खोजने वालों को नोबेल, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है। 3 वैज्ञानिकों को कोशिकाओं पर नियंत्रण से जुड़े काम के लिए चिकित्सा का संयुक्त पुरस्कार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Polling begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and lone Lok Sabha seat in Assam. BJP announces names of 8 candidates from Uttar Pradesh for Rajya Sabha elections. President Draupadi Murmu to be on a 3-day visit to Himachal Pradesh beginning today. India voices support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity, reaffirms its commitment to welfare of Afghan people. Yemen's internationally recognized government launches major military offensive against Houthis. And in men's cricket, first T20 international of the 5-match series between India and West Indies to be played in Lucknow today. Polling has begun for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam. In Tamil Nadu, voting is taking place for Madhuran Thakam and Dharapuram assembly seats in Puducherry, for Thattan Chowri assembly seat and Rejinagar and Nondigram assembly seats in West Bengal. More from a Kolkata correspondent.
4: The by-election in Nandigram was necessitated after Chief Minister Shubhendu Dhori, who won both Nandigram and Bhavanipur in the 2026 Assembly election, vacated the Nandigram seat and retained Bhavanipur. Similarly, the Regina and resigned from Rejinagar. In Nandigram, 16 candidates are in the fray, including the Trinamool Congress has not fielded a candidate and is supporting Mr. Milon Pradhan. In Rejinagar, 14 candidates are contesting the elections. Among the prominent candidates are Shakar of Sarkar of the BJP, Gulab Nobi Azad of Am Janata Unnayan Party, Raviul Alam Chaudhary of the Mamata All India Trinamool Congress and Mohammad Abdullah Kafi of the Congress. Shandipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
3: The counting of votes will be taken up on Friday. BJP has announced the names of 8 candidates for the upcoming Rajya Sabha polls for

उत्तर प्रदेश पार्टी एसोसिएटेड धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्णा पांडे, अंगवार. The names were approved by the BJP Central Election Committee. Today is the last day for filing nominations for the by

0: होंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: रक्षा मंत्री ने उन्नत स्लेपवे 4 और 300 टन क्षमता वाले गोलियन क्रेन का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश के एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटी डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
2: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया का संकट एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसने एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला लेगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतिकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहे सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। हादसे में विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति बोला टिनुबो ने हादसे के कारणों की तत्काल और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Defence Minister Rajnath Singh today launched Fleet Support Ship 1, laid the keel for Fleet Support Ship 5 and inaugurated the upgraded Slipway 4 and a 300-ton Goliath crane at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam. The upgraded Slipway 4 along with the new crane will enable the shipyard to build and launch vessels of up to 45,000 DWT. This will increase its capacity to undertake the construction.

0: पुरम, पुदुचेरी में तट्टान सावदी और मगरबी बंगाल में रेजी नगर और नंदीग्राम असेंबली सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा असम की नागांव लोकसभा सीट के लिए भी वोटिंग जारी है। वोटों की गिनती जुमे के रोज होगी। भारत की कौमी टेलीमेडिसिन खिदमत ई संजीवनी पर टेली सलाह मशवरों की तादाद 50 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जो मुल्क भर में क्वालिटी हिफ्जाने सेहत को मजीद काबिल रसाई, कम खर्च और सभी शहरियों के लिए मुसावियाना तौर पर फराहम करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को फरोग देने की हुकूमत की कोशिशों में एक अहम संग मील है। इस प्लेटफॉर्म पर सभी 36 रियासतों और मरकज के जर इंतजाम इलाकों में मजमुई तौर पर 50 करोड़ से ज्यादा टेली सलाह मशवरे रिकॉर्ड किए गए। सेहत और खानदानी बहबूद की भारत ने बताया कि इस हुसूलयाबी से मुल्क के मौजूदा हिफ्जाने सेहत निजाम की तकमील में टेली मेडिसिन के बढ़ते हुए रोल और खासतौर पर देही, दूरदराज और कम सहूलियात वाले इलाकों में रहने वाले शहरियों को दरपेश फासले, जोग्राफियाई और रसाई में दरपेश रुकावटों पर काबू पाने में कामयाबी की अक्कासी होती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से अपील की है कि वो इस शोबे में खिदमत और हमदर्दी के जज्बे से काम करें। आज हिमाचल प्रदेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स बिलासपुर के पहले जलसाए तकसीम असनाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि डॉक्टरों को ऐसा रवैया अपनाना चाहिए जिससे इदारे के वकार में इजाफा हो और आइंदा नस्लें उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तहरीक हासिल करें। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को अक्सर खुदा का नुमाइंदा तसव्वुर किया जाता है और इसलिए खिदमत खल्क उनका अव्वलीन मकसद होना चाहिए। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि डॉक्टरों का हमदर्दी से पुर रवैया मरीजों की काफी मदद कर सकता है।
1: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदलें और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाएं।
0: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संस्कृत एक सुनहरी डोर है जो सभी भारतीय जबानों को बाहम मरबूत करती है। आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री कौमी संस्कृत यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद के दूसरे सालाना जलसे से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि हर भारतीय जबान एक अजीम जबान है और इन जबानों से मुल्क की सकाफत में गिना कदर तआवुन हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने दीगर जबानों के अलावा संस्कृत को फरोग देने के लिए भी बहुत से इकदामात किए हैं। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 से भारत के इल्मी निजाम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए इस विजन को मजीद तकवीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि इससे यूनिवर्सिटीज और तालीमी इदारों की हौसला अफजाई होती है कि वो भारत के इस इल्मी निजाम को अपने प्रोग्रामों में शामिल करें। जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि संस्कृत का मकाम साइंस, अदब और फलसफे की दुनिया में शानदार हैसियत का हामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी ने आज ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी की नुक्ताचीनी की है कि अपोजिशन पार्टियां बिलखसूस कांग्रेस मुल्क में लाकानूनियत का माहौल पैदा करने के लिए मंसूबाबंद तरीके से इकदाम कर रही हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां मुल्क के आईनी इदारों के खिलाफ मंसूबाबंद तरीके से इहानत आमेज बयान दे रही हैं।
2: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: जल शक्ति के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने आज कहा है कि भारत ने पानी के तहफ्फुज़ के सिलसिले में जो कोशिशें की हैं वो इस मुल्क की तारीख में सबसे बड़ी कोशिशों में से एक हैं। इनसे जनभागीदारी और इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत को मजबूत बनाने की अक्कासी होती है। नई दिल्ली में पानी से मुतालिक इख्तरा की एक सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पानी की किल्लत वाली रियासतों में मुख्तलिफ देही तरक्कियाती इकदाम किए गए हैं। अपोजिशन पार्टियों ने आज पार्लियामेंट हाउस से निर्वाचन सदन तक एक एहतजाजी मार्च किया जो भारत के इंतखाबी कमीशन का सदर दफ्तर है। ये मार्च खसूसी तफसीली नजरसानी SIR के अमल में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ और आला इंतखाब

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
0: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री

0: और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के वास्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों नारापुरम और मदुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मदुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और नारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज की विशेष श्रृंखला में बात गुजरात की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
2: नर्मदा नदी में साधु बेट पर 182 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2080 सीटों का प्रतिनिधित्व करती यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। जनभागीदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए देश भर के लाखों किसानों ने अपने पुराने कृषि औजारों का लोहा इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान दिया था। राष्ट्रीय गौरव के इस प्रतीक के निर्माण और इससे आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहे जिसने माँ भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
2: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बनी देविका बेन तड़वी बताती है,
4: स्टैच्यू आने के बाद हमें जॉब भी मिली हुई है, हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते और रोजगारी मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
2: अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और पर भी उपलब्ध हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर कृपया से फिर से सुन लें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
6: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ ओपीडी परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
2: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदले और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की हर भाषा समृद्ध है और सभी भाषाओं ने देश की संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
3: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
1: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
3: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था। और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट सीजेआई द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। सीजेआई ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे। उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हुती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
4: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को

0: सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हुतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने हुदैदा में कार्रवाई की। गठबंधन के मुताबिक हुतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि उसे सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्र कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। कल वे सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की जरूरत है। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि यह उन्नत बुनियादी ढांचा समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी ऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय इस जहाज पर हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज के 19 सदस्यों वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीय सहित 12 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। ओमान के अधिकारियों की मदद से सभी घायलों को जहाज से निकालकर ओमान के खासाब शहर में उनका उपचार किया जा रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और शांति तथा स्थिरता के लिए ऐसे हमले फौरन रोकने की भी अपील की है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की है।
2: कांग्रेस के प्रथम परिवार जिसने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला पकड़कर राजतंत्र का शासन चला रखा है लोकतंत्र के आवरण में, और आज आकाशवाणी में घुसपैठ करने का प्रयास किया।
0: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ। निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर दर्ज हुआ। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज शाम 7 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन अद्य विशाखापत्तनम् नगरे हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इत्यत्र फ्लीट सपोर्ट शिप वन इति नौव्यूह सहायक पोतः समुद्घाटितः अथ फ्लीट सपोर्ट शिप फाइव इति पोतस्य च आधारशिला स्थापिता. तमिलनाडु पुडुचेरी पश्चिम बंगालानां पंच विधानसभासनेभ्यः अथ असमस्य एकस्य लोकसभासनस्य च कृते जाते उपनिर्वाचने मतदानं प्रवर्तते. भारतस्य राष्ट्रिय दूरचिकित्सा सेवया ई संजीवनी इत्यनया 50 कोटितः अधिक दूरपरामर्शाणां महत्वपूर्णं सीमाचिह्नम् अवाप्तम्. विश्ववित्तकोषेण वर्तमान वित्तवर्षाय भारतस्य जीडीपी इत्यस्य वृद्ध्यनुपातस्य पूर्वानुमानं पूर्वनिर्धारितात् 6.6% संवर्ध्य 7.1% कृतम्. अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत वेस्ट इंडीज दलयोः मध्ये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धायाः प्रथमं द्वन्द्वम् अद्य लखनऊ नगरे सम्पत्स्यते. अथ वार्ताः विस्तरेण. केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन एकीकृत परिवहनापूर्ति व्यवस्थापन प्राधिकरणस्य स्थापनायै अनुमोदनं प्रदत्तम्. अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् अनेन परिवहनापूर्ति व्यवस्थापन क्षेत्रे अनुसन्धानं योजना निर्माणं मूल्यांकनं निरीक्षणं तथा प्रभाव मूल्यांकनञ्च सुदृढं भविष्यति. सः उक्तवान् यत् इदं देशे एकीकृत परिवहनापूर्ति व्यवस्थापन योजनायै शीर्ष संस्था रूपेण कार्यं करिष्यति.
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7%-8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है. देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं. इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था. अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा.
0: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन लघु मध्यमोद्यमेषु स्वामित्व निवेशाय 10,000 कोटि रूप्यकाणां लघु मध्यमोद्यम विकास निधेः स्थापनायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्. श्रीवैष्णवः उक्तवान् यत् अयं निधिः उच्च विकास क्षमता युक्तेभ्यः व्यावसायिक सामर्थ्यं विस्तार क्षमतां च प्रदर्शितवद्भ्यः लघु मध्यमोद्यमेभ्यः दीर्घकालिकं स्वामित्व निवेश धनं प्रदास्यति. मन्त्रिणा उक्तं यत् निधेः अधिकांश भागः विनिर्माण क्षेत्रे केन्द्रितेभ्यः लघु मध्यमोद्यमेभ्यः प्रदास्यते. सेवाक्षेत्रे प्राविधिक क्षेत्रे नवोन्मेषाधारितेषु क्षेत्रेषु तथा रणनीतिक मूल्य श्रृंखलायां च कार्यं कुर्वद्भ्यः उद्यमेभ्यः अपि अयं निधिः साहाय्यं प्रदास्यति.
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है. उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया. इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा. ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा.
0: रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन अद्य विशाखापत्तनम् नगरे हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इत्यत्र फ्लीट सपोर्ट शिप वन इति नौव्यूह सहायक पोतः समुद्घाटितः अथ फ्लीट सपोर्ट शिप फाइव इति पोतस्य च आधारशिला स्थापिता. तत्र उपस्थितां जनसभां सम्बोधयन् श्रीसिंहेन प्रतिपादितं यत् देशस्य सामुद्रिक शक्तेः संवर्धनाय अथ रक्षा सामर्थ्यस्य सुदृढीकरणाय च भारतस्य कृते सुदृढस्य एकीकृतस्य च सामुद्रिक पारिस्थितिकी तन्त्रस्य महती आवश्यकता वर्तते. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते.
2: अनुक्षणम् अद्यतनसूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु. एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु.
0: नवदिल्ल्याः श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य द्वितीय दीक्षांत समारोहे भाषमाणः भारत

0: मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग हैं। उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने, तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश की परिवहन व्यवस्था में बेहतर तालमेल, आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने और परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेश निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत यह परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मदुरांतकम में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टाचावड़ी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजीनगर में 80

0: 0.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
1: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन आज यह एक वास्तविकता है।
2: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
1: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेनदेन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में यूपीआई आया है तब से चीजें बहुत सहज आसान हो गई हैं।
3: जब से यूपीआई मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक कोड है और उसमें यूपीआई से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ।
1: 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान लेनदेन की मात्रा में यूपीआई का योगदान लगभग 49% है। आज यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है, बल्कि लोगों का एक मंच है जो वित्तीय लेनदेन को तेज, सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है।
4: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों का सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
0: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस आल्जेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का

0: नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबुधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मिथ मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर जोर। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government approves setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Clears 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund. Prime Minister Narendra Modi hails decision as major boost to MSME sector. Union Cabinet congratulates Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of continuous leadership as head of the government. Defence Ministry inked 660 crore rupee contract to procure BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. Peaceful polling held for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam. Results on Friday. Belgian-born scientist Francis Hausson wins 2026 Nobel Prize in Physics for discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin. In men's cricket, West Indies set a target of 172 runs for India in first T20 of 5-match series in Lucknow. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning, briefing media in New Delhi today after the Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7%, 8%,
3: एज द कंट्रीज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 7-8%, द डिमांड फॉर लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अ लार्ज नंबर ऑफ हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री अलोंग विद न्यू रेलवे लाइंस, वाटरवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। टू इंश्योर दैट ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर प्लान्ड इन एन इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड मैनर, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान फ्यू इयर्स अगो। नाउ कीपिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स इन माइंड एंड इंटीग्रेटेड Transport and Logistics Authority will be established to study and plan all these aspects.
2: एक Integrated Transport and Logistics Authority का निर्माण किया जाएगा।
1: Mr. Vaishnav said the cabinet has also given nod to the establishment of 10,000 crore rupees small and medium enterprises.

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान साझेदारी और सतत विकास की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: स्कंद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: स्कंद जी। भारत और जापान एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, समृद्ध और दबाव मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना साझा दृष्टिकोण रखते हैं और दो ये ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनके पास संसाधन संपन्नता, तकनीकी क्षमताएं और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता है, और दो ऐसे देश हैं ये जिनके पास मैत्री और पारस्परिक सद्भावना की एक लंबी परंपरा रही है। ऐसे में हम जब तमाम बातों का जिक्र करते हैं तब एक ऐसी अभिलाषा जो पेरिस समझौते से शुरू हुई थी, जिस तंत्र की हम बात कर रहे हैं, ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म की, जो हमारे सामने आज आई है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहां से इसकी जरूरत महसूस हुई, इसके बारे में बताएं।
2: इसकी पृष्ठभूमि अपने श्रोताओं के लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा। पेरिस एग्रीमेंट, देखिए वैश्विक तापन की जिस तरह हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये पिछले 2-3 दशक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जनता के सामने, विश्व के सामने और सब संस्थाओं के सामने है। और 12 दिसंबर 2015 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पेरिस में साइन हुआ। 195 देशों ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए। और जो सबसे खास बात है उस एग्रीमेंट की, कि कुछ लीगली बाइंडिंग रेस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस या कमिटमेंट्स सब सिग्नेटरीज से लिए गए कि आप कार्बन एमिशन को कम करने के लिए अपने देश में क्या प्रयत्न करेंगे। इसमें जो बातें हुई उसमें ये है कि दुनिया का विकास हो, टिकाऊ विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, पर एक लो कार्बन, जो भी नई तकनीक आ रही है वो लो कार्बन की हो, जिससे कि विश्व में जो ऊष्मा बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो तापमान जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जब औद्योगीकरण 17वीं शताब्दी कह लीजिए, 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ, उसपे 2% से ऊपर आ जाए। इस सब परिप्रेक्ष्य में अब हर देश को एक अपने विकास के किस अवस्था में है उसके हिसाब से सबने कमिटमेंट्स किए। भारत ने भी किए, हर देश ने किए, तापमान ने किए। और एक जो नया इसमें एक रास्ता था आर्टिकल 6.2 पेरिस एग्रीमेंट का, उसमें देश या कंपनियां एक दूसरे के साथ कार्बन क्रेडिट्स का व्यापार कर सकते थे। तो ये इस तरह है कि मान लीजिए जैसे भारत है, भारत का बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और भारत एक नेट सेलर है कार्बन क्रेडिट्स का। जिस तरह से हमने अपना डेवलपमेंट किया है, बहुत सोलर एनर्जी और इस तरह का सब है, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो भारत इस स्थिति में है कि कार्बन क्रेडिट्स दूसरे देशों को बेच सके और उसका ये रूप आज भारत जापान के बीच में किस तरह ये ट्रेड होगी उसका समझौता हुआ है।
1: स्कंद जी, ये जो एक रणतंत्र हमारे सामने रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य कहा गया है कि उन्नत तरीके से निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना चाहिए। आपने भी इसी बात का जिक्र किया कि

0: सक्षम है ऐसा करने में। तो जलवायु वित्त जुटाने की जहां तक बात है, तो भारत इन तकनीकों को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। आज हमारे पास जो तकनीक है, परियोजनाएं जो लगातार सरकार आगे लेकर के आ रही है, उनसे क्या लगता है कि इस तंत्र को कितना बढ़ावा मिलेगा, कितनी मजबूती आएगी उसमें?
1: बहुत बढ़ावा मिलेगा। देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे एल्यूमिनियम है, स्टील है और पेपर बनाने का है, उसमें भारत की जो मशीनें हैं वो पुरानी है
0: जी
1: भारत के उद्योग में, और उनके नवीनीकरण की, आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। तो जिस तरह जो ये एग्रीमेंट जापान के साथ हुआ है, तो जापान नई तकनीक जो उनके पास है उसको बहुत सस्ता भारत को देगा, जिससे भारत कार्बन एमिशन भारत की इंडस्ट्रीज के कम होंगे और भारत उस दिशा में आगे बढ़ेगा बिना बहुत पैसा खर्च किए। ये एक बहुत बड़ा लाभ इस जो आज एग्रीमेंट हुआ है ऑपरेशनलाइज, उससे भारत को होगा।
0: थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें तो 7 अगस्त 2025 को सहयोग ज्ञापन, 8 जून 2026 को नियमों को अपनाना और अब 30 सितंबर को परिचालन नियमावली जारी हुई, तो ये प्रक्रिया संस्थागत तैयारी के कार्यान्वयन को बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत इस दिशा में सबसे तेजी से प्रयास कर रहा है और जो भी तरीके हैं वो पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने और भरोसेमंद बनाने के लिए भी है। तो ऐसे में जेसीएम का कितना महत्व हमारे सभी के लिए हो जाता है?
1: जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कार्बन क्रेडिट की स्कीम का पूरा एक स्थापना की गई। होता क्या है कार्बन क्रेडिट, उसकी यूनिट्स मानी जाती हैं और एक यूनिट इक्वल टू करीब करीब 1 मैट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है।
0: जी,
1: और फिर एक ये प्रक्रिया भी स्थापित की गई कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे या कंपनी स्तर पर कैसे खरीदा बेचा जाएगा। उसके बाद भारत ने बहुत जल्दी इस पर काम किया और 2022 में एक एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बनाया और एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के नीचे कैसे इंडिया की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम काम करेगी, कौन कैसे बेचेगा, क्या करेगा, ये पूरा एक तंत्र उसके लिए बनाया गया। और जापान ने भी इसी तरह बनाया। उसके बाद जैसा आपने कहा, 7 अगस्त 2025 को सबसे पहले एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन भारत और जापान के बीच में हस्ताक्षर हुए। 8 जून 2026 को रूल्स उसके बने, रूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, के कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। और अभी जो कुछ दिन पहले भारत और जापान ने साइन किया वो है ऑपरेशनल मैनुअल फॉर ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, की कैसे इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। ये मान लीजिए वो भारत की कोई संस्था कुछ कार्बन क्रेडिट जापान को बेचना चाहती है, तो जापान उसको कैसे खरीदेगा, कैसे अकाउंटिंग होगी उसकी, कहाँ उसका रजिस्टर रखा जाएगा और कैसे वो पैसा ट्रांसफर होगा। तो अब बहुत तेजी से इसकी जमीन पर ये स्कीम जो है वो उतर आएगी।
0: स्कंद जी, जेसीएम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भारत में उच्च स्तरीय उत्सर्जन कटौती और उत्सर्जन निष्कासन को बढ़ावा देना, तो इसका भारत के जो पर्यावरणीय लक्ष्य हैं, कम कार्बन विकास की दिशा में हमें काम करने की बात की जाती है, तो इसका व्यवहारिक असर आपको किस तरह से दिखाई देता है? कितना सक्सेसफुल होने के चांसेस आपको लगते हैं कि हाँ, इस दिशा में आगे बढ़ने से हम जिन उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं उनको प्राप्त करने में सक्षम होंगे?
1: अपना हमारा जो कार्बन एमिशन है उसको कम करने के बहुत सारे स्रोत हैं। एक जगह जहां भारत सोलर या गैस, उससे ऊर्जा का उत्पादन अधिक करना चाहते हैं, एक रास्ता ये हो गया। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगीकरण में जो कैपिटल इक्विपमेंट आता है उसमें अब नई तकनीक की आवश्यकता है जो कि ज्यादा कार्बन एमिशन उसमें ना हो। जैसे स्टील का मैंने जिक्र किया, उसमें कोक इस्तेमाल होता है, बहुत आता है, हम ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, इंडोनेशिया से मंगाते हैं, उसमें से कितना धुआं निकलता है, कितना कार्बन निकलता है, कितना जला देते हैं। ये जो नई नई तकनीकें हैं ये बहुत महंगी हैं। और जापान के साथ जो आज हमारा अभी कुछ दिन पहले एग्रीमेंट हुआ, उसमें हमारा ईयू और यूके के साथ तो पहले से ही इस तरह का एक एग्रीमेंट है, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के साथ
0: जी,
1: कि हम अपना कार्बन क्रेडिट उनको बेचकर ये नई तकनीकें लें, जिससे कि भारत के जो उद्योग हैं वो अपना नवीनीकरण कर सकें, अपना आधुनिकीकरण कर सकें और उनके कार्बन एमिशन कम हो जाएं। क्योंकि जो एक बड़ा भारी खतरा यूरोपियन यूनियन की तरफ से आ रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर मान लीजिए स्टील भारत यूरोपियन यूनियन को निर्यात करता है, तो अगर वो एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी यूनिट से आ रहा है जिसका कार्बन एमिशन ज्यादा है, तो वो उसके ऊपर कुछ टैक्स लगा देंगे।
0: जी
1: नॉन टैरिफ बैरियर वो लगाने का प्रयत्न कर रहा है। भारत का ईयू के साथ जो समझौता, देखिए बहुत दिन से बात चल रही है एफटीए की, और एक आध चीज उसमें अभी नहीं डिसाइड हुई, ये भी है, तो इसका एक बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकता है भारत के।

0: निर्यात पर अगर इस तरह का जो यूरोपियन यूनियन कोशिश कर प्रयत्न कर रहा है वो और देश भी करे, तो इसलिए एक ये बहुत ही पेचीदा मामला है। पर जो जापान के साथ जिस तरह का हमारा एग्रीमेंट हुआ है और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, भारत के निर्यात पर उस पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा।
1: स्कंद जी, जिस तरह आप भारतीय अर्थव्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा अगर एक चीज मैं ये जोड़ना चाहूं कि भारत और जापान विशेष रूप से रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ऐसे में पारदर्शिता होना, भरोसा होना बहुत ही लाजमी है। तो अपने जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं उनके साथ में भी हम किस तरह के लाभ उठा सकते हैं, खासतौर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की आप बात कर रहे थे, और भी तमाम क्षेत्र जिन पर असर पड़ता है, क्या क्या लाभ मिलने की संभावना नजर आती है?
0: देखिए, जापान के साथ जैसा आपने कहा और आरंभ में भी कहा था, जिस तरह की हमारी मित्रता है और जिस तरह का एक कोऑपरेशन है, जापान ने भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है हमेशा। अगर आप देखें तो मेट्रो दिल्ली में और जो सब शुरू हुई वो जापान के ओडीए से शुरू हुई, अभी बॉम्बे टू अहमदाबाद देखिए बहुत ट्रेन जो बन रही है,
1: बुलेट ट्रेन
0: बुलेट ट्रेन, वो जापान की तकनीक भी वहां पे आ रही है, वहां से धन कुछ असिस्टेंस भी आ रही है, लोन क्रेडिट आ रहे हैं, ये पूरा जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है। तो बहुत तरह से मैं समझता हूँ कि भारत और जापान के संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हैं, और सामरिक तो हैं ही, वो इकोनॉमी में आर्थिक, केवल ये व्यापार वाला रिश्ता नहीं है, ये एक रिश्ता है जिसमें जापान बहुत भारत की औद्योगिक विकास में, मॉडर्नाइजेशन में, नवीनीकरण में और आधुनिकीकरण में बहुत योगदान कर रहा है। और जिस तरह का एग्रीमेंट अभी ये साइन हुआ उससे एक और रास्ता खुल जाएगा कि कार्बन क्रेडिट्स के मैकेनिज्म के द्वारा ये जो आधुनिकीकरण है उसकी फाइनेंसिंग हो जाएगी। देखिए, दुनिया के बाजार में हर चीज मिलती है,
1: जी
0: पर हर चीज के लिए आपको धन चाहिए, भारत को भी अपना प्रायोरिटाइजेशन करना होता है। तो उसमें कुछ नई तकनीकें अगर एक और रास्ते से आ जाए, जो ना आउटराइट परचेज का है ना एक ओडीए का है, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस का, मैं समझता हूँ भारत के विकास के लिए, औद्योगिकरण के लिए ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है।
1: जी एक अंतिम प्रश्न आपसे और पूछना चाहूंगा। अगर आगे की राह को हम देखें तो परिचालन नियमावली के बाद अब इस तंत्र की सफलता के मानक क्या होंगे हमारे लिए, और आने वाले समय में उत्सर्जन की कमी या तकनीकी हस्तांतरण जिस पर हम बात कर चुके हैं, और जलवायु वित्त के क्षेत्र में भारत जापान के किस तरह के परिणामों की उम्मीद की जा सकती है साझेदारी में?
0: मैं समझता हूँ कि अगले 6-8 महीने में और साल भर में कुछ न कुछ आंकड़े जरूर आएंगे कि जो ऑपरेशनलाइजेशन का जो समझौता कल परसों साइन हुआ है उसके अंतर्गत कितने कार्बन क्रेडिट, जैसा मैंने कहा कि 278 मिलियन कार्बन क्रेडिट भारत आज तक दूसरे देशों को दे चुका है पिछले 10 वर्ष में, तो जापान को अब और कितने देता है। और ये देखिए, एक ये खाका सा बन जाता है, तो दूसरे देशों के, मान लिया ऑस्ट्रेलिया है या कोई और देश यूरोप के, आप और भी कोई चाहें कि भारत से कार्बन क्रेडिट्स को खरीदना चाहें और टेक्नोलॉजी तकनीक हमको देना चाहें,
1: जी
0: तो इस एग्रीमेंट के बेसिस पर और उसी टेम्पलेट पर दूसरे एग्रीमेंट भी बन जाते हैं, तो दूसरे एग्रीमेंट्स को करना बड़ा आसान हो जाता है। किसी और देश के, कैनेडा करना चाहे, अमेरिका तो खैर अब इस समय है नहीं, इस पेरिस एग्रीमेंट से बाहर ही निकल गए हैं, सबसे ज्यादा
1: जी
0: एमिशन वैसे उनका होता है,
1: जी जी
0: पर भविष्य बताएगा कि अमेरिका किस दिशा में जाना चाहता है, जहां तक जलवायु परिवर्तन का सवाल है या वैश्विक तापन का सवाल है, क्योंकि इसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है उन दोनों की नीतियों में और उनके जो भी वो
1: जी
0: विश्वास करते हैं, तो वो तो भविष्य बताएगा। पर मैं समझता हूँ कि विश्व के और जो देश हैं अमेरिका को छोड़कर, वो जलवायु परिवर्तन की गंभीरता से पूरी तरह चौकस है और उसको नकारते नहीं है, और अपनी तरफ से सब मिलजुल कर बहुत प्रयत्न कर रहे हैं
1: जी
0: कि पेरिस एग्रीमेंट का वो अनुकरण करें, और जहां तक हो सके उसमें जो भी कमिटमेंट्स जिस देश ने भी किए हैं कि वो अपना कार्बन उत्सर्जन कितना कम करेंगे। देखिए, भारत में प्रधानमंत्री बार बार टारगेट्स वगैरह लगाते हैं
1: जी
0: कि हम 2037 तक इतना कर देंगे, फिर 50 तक इतना कर देंगे, ये सब, क्योंकि ये तो देखिए विश्व के लिए है, विश्व की अच्छाई के लिए है कि प्रकृति का बिल्कुल ही नाश ना हो जाए, एनवायरमेंट का नाश ना हो जाए। और दूसरी चीज जो हम लोग दिल्ली में देखिए, हमेशा एक पोल्यूशन की बात होती है, तो कैसे वो पोल्यूशन कम हो जो लोगों का हेल्थ भी अच्छी रहे, तो
1: जी
0: बहुत सारी इसमें बातें हैं जो इससे कवर होती है। और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी बात है कि भारत और जापान मिलजुल कर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं,
1: जी
0: और ये एक टेम्पलेट बन सकती है और देशों को भी।

0: एक दूसरे को साथ देने के लिए तकनीकी सबका आधुनिकीकरण हो, जिससे पूरे विश्व को लाभ होगा, पूरे मानव समाज को लाभ होगा। मैं तो कहता हूं कि पूरी एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम,
1: जी
0: हमारे पूरे प्लैनेट को लाभ होगा।
1: जी सन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान साझेदारी और सतत विकास की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।